0: लाल बहादुर धामी टिकापुनको कर्णप्रिय आवाजमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ, सुन्न नभुल्नु होला।
1: यो हो एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com।

0: एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com म्यूजिक नेपाल
1: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।

0: यहू एनबी रेडियो नेटवर्क www.nepalbodh.com
1: यो सन्देश डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।